जय गुरु गुरु निवास अंतर जामे सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र स्थान तख्त सचखंड दरबार दियां हाजरियां बढ़दे होए कीर्तन दे सतगुरु दसंग तौलो बेंत माया हाजर होए जिस खजाने विच माया हाजर किते सो सुख जाने भरपूर करना नाम दान गुरसिखी वाला जन वसना।

वो ना जाने मेरा सचिया बादशाह, कोई ना वो ना जाने मेरा। वाहिगुरु जी का।

अंदर जियो सब जानला सब कुछ तेरा बस तेरा घर पला तेरा कर बधाई तुझे कर मान महता तेज अपना पजर सर्व कला भरपूर दी सजत कर।

नाचत फिरत मोर बांदर करत गोर दामनिया नेक भाव करे हुई करत है। चंद्रमा ते शीतल न सूर से तपत तेज इंद्र सोना राजा भाव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्मा से न वेदचारी सनत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिर आई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फेर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा और विष्णु के ते वेद और पुराण के ते सिमृत समूहन के होए होए बिताए है। मोन दी मदार कित असुनी कुमार कित अंसावतार कित काल बस भय है। पीरे और पिताम्बर कित गन न परत एत भूम ही कह हुए के फिर भूम ही मिलाए है। जो की जाति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया गई घोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीब और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है। दारा से दिलीसर द्रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे कर अनेक दो बजी कपट भेस बोस दी अनेक तारी वावत है। शीस गौ कहा भय मल्ल जो पे काढ़त अनेक दंड सो तो न डंडो दया से डांग अत तीस गौ कहा भय रुग जो पे डाल रहे उर्ध मुख मान तेना मुंड ने हो रायो आद ईस गौ कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीस गौ। शीस पट कत जाके कान में खजूरा धस मुंड छट कत मित्र पुत्र हूं के शोक सो आंख को चरैया फल फूल को भचैया सादा बन को भ्रमैया और दूसरो न भूक सो कहा भयो भेड़ जो घसत शीस वृक्षर सो माटी को भचैया बोल पूछ लीज जोक सो कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सो। नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करोई करत है। एक पाए ठंड सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठोर वास करे काग और चीर देश देश बिचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में नहु जलीन भावना यकीन दीन कैसे कह तरत है। जैसे एक सोंगी गहूं जो किया बराकी बन कब हूं संन्यास भेष बन के दिखावई गहूं पौन हारी गहूं बैठ लाए तारी गहूं लोभ की कुमारी सो अनेक गुण गावई कहूं ब्रह्मचारी कहूं हाथ पे लगावे बारी कहूं दंड धारी होइ के लोग न भ्रमावई कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार गीदर पुकार पर शीतकाल कुंचर ओ गदहा अनेक दा पुकार ही कहा भय जप कल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोर टाकु ठारन सो मारही कहा भय फांसी डार बुढ़ जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही। ताप के सहत जो बिपाइये अतापना सतापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए ते जो बिपायत जाप देव बोधना सदीव तुही।

सवेरा सकर हीम ओई दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मान बो एक ही की सेव सब ही कपूर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहु राम सीत सोई पूजा निवाज हुई मान सब एक पे अनेक को भ्रमाओ है देवता देव जा कंदरव तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के

जैसे एक आग ते कनु का कोठ आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में बिलाहेंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नाद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। केते कछ माछ केते उनको करत भाष केते अच वच हो सपच उड़ जाहेंगे। केते नव बीज अच पछ को कर

काल के बनाए सब काल ही जबाहेंगे। तेज जीव तेज में तेज जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग बासी कित मदीना मक्का निवासी के तक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सू अपे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। शोध हार देवता विरोध हार दानो बटे बोध हार बोधक प्रबोध हार जाप सी घास हार चंदन लगाए हार जो आचार पूज हार बाहन चढ़ाए हार लापसी गा हार गोरन मनाए हार मटी मटली बहार भीतन लगाए हार छापसी गाय हार गंधर्व बजाए हार किन्नर साब पाचा।

नेह गृहं कहूँ देह दुखं कहूँ औखदि रोग के शोक सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जच्छ गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी सातकी तामसी हो कहूँ जोग विद्या दरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूमि की भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जच्छ विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्टि की

कहूँ शुद्ध शेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्धावस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राजसाजं कहूँ राजरीतं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ आरबी तोर की पारसी हो कहूँ पहलवी वस्तवी संस्कृति हो कहूँ देश व्याख्या कहूँ देव बानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारंग कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र धारंग कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूँ वीन विद्या कहूँ गान गीतं कहूँ मलेज

रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय द्रास आस नहीं भो मभुगत जय काल ब्याल कट्यो न अंग अच्छा स्वरूप अखय अभंग जय नेत नेत उजरंत वेद जय अलख।

तन सीत खाम वरखा सह कई कलब एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावतन पार कई ऊर्ध बाह देसन भ्रमांत कई ऊर्ध मध पावक झुलंत कई सिमृत सासरत।

दूत भूत छूत मतंगन गाद प्याद नाद कतंगन खेद भेद छेद नरंग जे चार चतुर्दिश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जे सोग न भोग न जोग जुगंग भू मंजन गंजन आदि सिरंग जे बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन वंज प्रवाहन गंज प्रतंग जे पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपद वेद पुराण सभा जय वेद कतेव अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जपै सुत सिंध अदो मुख ताप तपै कई कल्पन लो तब ताप करै नई न कृपा निध पान पर जय फोकट धर्म सभय तज है एक चित्त कृपा निध को जप है त्यो या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट प्रति इम वेद उचारत सार सुती जो वारस के जस के रस है।

अगंज आद देव है अभंज भंज जानिया भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दास देव सर्व सात है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिए सदीव सिद्ध शुद्ध दा प्रताप पत्र जानिए नराग रंग रूप है न रोग राग रेग है अदोग ताग दग है अभूत ब्रह्म भेग है न दात माद जात है न पात चिहन वर्ण है अदेग शेख भेग है सदीव विश्ववरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेख विश्वभरण है जिबीज मान के बिके सदीव करम भरम है अद्वेख है अभेख है अलेख नाथ जानी है सदीव सर्व ठौर में।

गंज आद देव है कहो सो कैस पाइये। जिमी जमान के विखे समस्त एक जोत है, न घाट है न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होत है, न हान है न बान है, समान रूप जानिए। मकीन ओ मकान अप्रमाण ते जमानिए।

है, प्रया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सोच है, न ग्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र की विभूत है।

गजाधपी नराधपी करंत सेव है सदा सिद्धस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा अगस्त आद जे बड़े तपस्तपि विशेखिय बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ भेखिय अगाध आद देव की अनाद बात मानिए न जात पात मंत्र मित्र सत्र सने जानिए सदैव सर्वलोक के

जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहयो बिराज धराज राज प्रवीन जछ गंधर्व देवदानो न ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैष्णव के बिखे बिराज सूत्र भी वह नाहे गूढ़ गौड़ न भील भी कर

शेष नाम सहंस फरण है नेत पूर्ण होत सोत सोत हटे सफय सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब पड़त पड़त थके महागव गढ़त गाढ़ अनंत हार हार कहो सबो मेर नाम नाम दुरंत वेद भेद न पायो लखियो न सेवक तेव देव दानो मूढ़ मानो जश न जान जेब भूत बाप भवा

दुष्ट हरणं पुष्ट करणं सर्व के प्रतपाल सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भुक्ता सर्व जुगता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दुष्ट हर्ता विश्वहर्ता आदि रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देव खंड भूमा का चले थले मह जपत जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आद देव अपार श्री पद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सब मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर

सत द्वापर तृतीया कल युग चतुर काल प्रधान ध्याय ध्याय धके महामर गाय गंधर्व पार हार हार धके सब नहीं पाइये तह पार नारद आदिक वेद।

असुर चंडन मुंड बिमुंडन खंडया खंडन खून खिते दामनी दमंगन ध्वजा फरंगण फणी फुंकारण जोध जिते सरधार विपर खंड दुष्ट प्रकार खंड पुष्ट प्रहार खंड दुष्ट मथे जय जय हो श्री माखासुर मर्दन भूमा कास्तल उर्ध्व थे दामनी प्रहासन सुचम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आचन जोध प्रमाचन हृदय नराजन धर्म प्रते

आसन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुत सन्ना हे अगम था हे एक वृते जय जय हो सीमा खासुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते सुर नर्मन बंदन दुष्ट निगंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरु कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर्म

घंट का बिराजे रुण झुण बाजे ब्रह्म भाजे सुनत सुरंग कोकिल सुन लाजे किल बिग भाजे सुख उपराजे मध उरंग दुर्जन दल दज मंत्र रिछे सब न भजे रूह रणंग जय जय हो सीमा का सुर मर्दन चंड चक्र धन आद पुरंग चाचरी प्रचोदन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर मिते धूमराज प्रध्वंसन प्रलय प्रजुंसन जग विध्वंसन शुद्ध मते जाल पा जयंती शत्रु मथंती दुष्ट

वी प्रकार खंड सर्वर वर खंड दुष्ट प्रदार खंड पितल तले अष्टायत वाहन बोल निबाहन संत पनाहन गूढ़ गति जय जय हो सीमा खासुर मर्दन आद नाद गाध वृत्ति दुख दुख प्रबच्छन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे।

के बाघ भुवन के बुजाफरन के शुद्ध गति जय जय हो से मखा सुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते तचरा सुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक भट्टे पापान बिहंडन दूष प्रचंडन खंड अखंडन।

जात नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अविचल पार जानी न जाय जय रूप रेख कहे बास तास कहे कौन फे कहे नाम तास है कवन जात जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चिन्ह नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत के करत पाल उर्धंग बिरहद सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंशिज तेज अनभिज दाग जल थल महीप बंधन दुरंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दुख दहता उदार कई गोट इंद्र जय पान हार कई गोट रुद्र चुकिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत त्वा प्रसाद सवैये दीनन की व्रत पाल कर नित संतु बार गनी मन गारे पच पशु नक नाग नराधिप सर्व समय सबको व्रत पार पोखत है जल मै थल मै पल मै कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दया नित दुखन देखत है पर देत नहारे दाहत है दुख दोखन का दल दुजन के पल मै दल डारे खंड अखंड प्रचंड बहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभारे पार न पाए सके बद मापद भेद कतेब अभेद उचारे रोज ही रात बिजुगत राजक रोख रुहान की रोज नटारे कीट पतंग कुरंग भुजंग भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे हंगेव न भेव लख्यो भ्रम शिव भरमाए वेद पुराण कतेब कुरान सेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद स्यों किन श्री पद माप

लोकन के करता हरता जल मै थल मै भरता प्रभ है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद माप दे है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह विहीन स्नेह सभोतन नेह विरक्त अगेह अच्छ है। जान को देद अजान को देद जमीन को देद जमान को दे है काहे को डोलत है तुम्हरे सुत सुंदर श्रीपद माप तले।

कह दो सौ सो पेट ही के पट बीज बचावे। जच भुजन सो दानव देवा भेव तुम सब ही कर ध्यावे। भूम आकाश पताल रसातल जच भुजंग सब है सरण्यावे। पाय सके नहीं पार प्रभा हूँ को नेत ही नेत भेद बतावे। गोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रव नारिक से सब हूँ मिल गायो। वेद कतेव न भेद लखियो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाय सके नहीं बार उमापद सिद्ध सनात सनंदन ध्यायो। ध्यान धरो देह को मन मैं जह को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेब कुरान अभेद निर्वाण सब है बजहारे। भेद न पाए सके अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साग न शोक न संग तिहारे। आद अनाद अगाध अपेख अद्वेख जप्यो तिन ही कुल तारे। तीरथ कोट की ए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश फिरो कर बेद संबोधन केस धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बहु न्यास करे मुख कारे। दीन दयाल अकाल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया छेत्र छत्र के धरैया छत्र धारियों के छलैया महाशत्रुन के साल है। दान के देवैया महामान के बढ़ैया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्ध ताके दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पाव हिंगुला हिमालय द्यावे गोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जोग जोग साधे पौन साधना की देख बांधे आर बके आर भी आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी गोरे सी जाने पच्छम के पच्छमी पछाने निज काम है। मरहटा मंगेली तेरी मान सो तपस्या कर दृढ़ वे तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली

जान को बचैया है, मान को दिवैया है, जमजाल को कटैया है, के कामना को कर है, तेज को प्रचंड है, अखंडन को खंड है, महीपन को मंड है, गे सृहन नर है, विश्व को भरण है, गया पदा को हरण है, के सुख को करण है, के तेज को प्रकाश है, पाई है न पार पार वार हमको पार, जागो की जत विचार सो विचार को निवास है, हिंगुला हिमालय गावे हसी हल विधावे, पूर्व बिना पार पावे, असत अनाश है, देवन को देव महादेव हूँ के देव है, निरंजन अभेवनाथ अद्वैत अविनाशी है, अंजन विहीन है, निरंजन प्रवीण है, के सेवक अधीन है, कटैया जम जाल के, देवन के देव महादेव हूँ के देवनाथ, भूम के भुजैया है, मुहैया महाबाल के, राजन के राजा महासाज हूँ के साजा, महाजोग हूँ के जोग है, धरैया तुम छाल के, कामना के कर है, के बुद्धता को हर है, के सिद्धता के साथी है, के काल है कुचाल के, छीर कैसी छीरावत छास के, छत्रा नेर छपा कर कैसी छब, कालिंद्री के गोल के, हंसनी सी सिंहारू हीरा सी हो सैनाबाद, गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के, पारसी पलाऊ गढ़ रूपा के, सी रामपुर सोरा सी सुरंगाबाद, नी के छो रही झूल के, चंपा सी चंदेरी गोल्ड चांदनी सी चांदागढ़, कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के, फटक सी गलास कमाऊ गढ़ कांसी पुर सीसा सी सुरंगाबाद, नी के सोहियत है, हिमा सी हिमालय हर हार सी हला पाने, रहस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है, चंदन सी चंपावत चंद्रमा सी चंद्रगिर, चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है, गंगा सम गंग धार पकान सी बिरंदाबाद, कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है, फरासी फिरंगी फरासी के दुरंगी, मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाइयत है, बखरी गंधारी गोर गखरी कर दे जाचारी, पौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है, पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर में विराज, जहाँ जहाँ जाइयत है, पूर्ण प्रताप चंद्र मंत्र दया ताभिनाथ की।

रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गरहाई, कहण न जाई तेरी तल वडियाई। सब सत सब तप सब चंगियाइया, सिद्धां पुरखां कियां वडियाइया। तुद विण सिद्धि कनै न पाइया, करम मिलै नाही ठाक रहाइया। आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू दहे तसै क्या चारा, नानक सच सवारन हारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाओ। आखण औखा साचा नाओ, सच नाम की लागे भूख, उत भूख खा।

तृप्ता सह मल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए दृग जीवै दृग जीवास। जिन हर जिन सतगुर संगत पाई तिन धर्मस्तक लखया लखास। धन धन सत संगत जित।

सैल पत्थर मैं जंत उपाय, ताका रजक आगे कर धरिया। मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद।

सिर रजक संबाहे ठाकुर काहे मन भाव करिया ऊडे ऊड आवे सैकूसा तिस पाछे बचरे छरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करिया।

सोई थीसी जो तू दहे सोई हाँ पाई रहा सब तेरी तू सबनी ध्याया जिसनू कृपा करे तन नाम रतन पाया गुरमुख लाथा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनों तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिंदु जा अवर ना कोए तू कर कर वेखह जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरडै भैले निवासा पाणी पावक तिन है किया पंक जुमो हो पग नहीं चाले हम देखा तह डूबी अले मन एक न चेतस मूड मना

सकल प्रजा जन आप सवारी शिव कण को शिव गुण सुख दियो सतरण को पल मोह पद कियो घाट घाट के

लेहु उबारी सर्व ठौर मोहो सुहाई दुष्ट दोख दे लेहु बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किलबिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को क्षय करता श्री अजदुज भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशत फल पावे सोई दुख नाथ सह ब्यापत

चौपई सम सत्रह सहस भणी जय अर्ध सहस फुन तीन कहे जय भादो सुधी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र पखयाने त्रिया चरित्र मंत्री भूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समापत।

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत। स्वर्ग बा स्वर्ग वर करा सगरी पुरी समेत। चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे। बिशन भगत किए फल होई आद ब्याह छुए सकै न कोई। सम सत्रह सैस पचावन हाड़ वदी प्रथम सुख दावन। तौ प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परि लौले हो सुधारा दोहरा। नेत्र तुम के चरण तर सतद्रव तीर तरंग। श्री भगवत पूरन कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहरा। साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद। ग्रंथ सकल पूर

स्वरूपे सदा संगे अभंग विभूते देख गोविंद व्याप्त नान गुण गुरु गोविंद सिंह श्री काल प्रति सहाय दरबार में तुरु दरबार सच कण्व निरंकार लक्ष्मण दरबार।

साध संगत जी गुरु साहिब जी का लंगर तैयार है, प्रशादा छक के गुरु महाराज दियां खुशियां प्राप्त करो जी। बोले सो निहाल।

वैकुंठ नगर जहां संत वासा, नगर गोविंद गुरु का, नगर गोविंद गुरु का साहबजादे इत्थे बैठे आ, पंज प्यारे इत्थे आ, सारे साधु सारे भगत।

ला पहला पड़पड़ कटिल दिए पड़पड़ परिये सात पड़पड़ बेड़ी पाई पड़पड़ कटिए का पड़िए जित बरस बरस पड़िए जित मास पड़िए जित आ

उस रोग पया जा सुताम ना हो तू करता करना में ना ही जा करना हो बलिहारी कुदरत बसिया तेरा तन जाए लगिया रहा जात में जोत जोत में जाता अकल कला पर पड़ रहा तू सच्चा साहेब से बस वाली हो जिनकी

जुग जुग पैर बिठाए ज्ञानी पूछे ताहे सब जुग संतोख का धर्म गैर्थ पाओ त्रेतैर का जोर गैर्थ पाओ द्वापर

आवे आस्कर जाय निरास कित फल पिके फूल बक बके कमने आवे पत मिटत नीवी नानका गुण चंगियाया तत सबको नीवे आपको पर को नीवे ना कोई।

पौड़ी साहब हो दयाल कृपा करे तासाई कर करा शिशु सिवक सेवा करे जिस हुकम मनाए से हुकम मने हो परमाता खुशमे का मल पाए से खुशमे पावे सो करे मन हो चिंदिया सुफल पाए से।